0: That was Jara Samne Tao Chaliye from Janam Janam Ke Phere, Binak number one in 1957. The next song is Lal Lal Gal Jaan Pehe Lagu from Mr. X, Binak number three for 1957. And let's see if we can cue it up correctly.
1: और 1957 में बिना का गीतमाला की वार्षिक पादानों पर दो और संगीतकार चमके और वो भी काफी जबरदस्त छलांगे लगाकर एन दत्ता और एस एन त्रिपाठी जिनकी धुन उस साल के प्रथम गीत में गूंजी।

तो मोर मोर मोर ये तो है दिलो जिगर के, पीले पीले पीले इनके बाल है निराले, नीले नीले नीले इनकी अखड़ियों के प्याले। चोर चोर चोर ये नहीं है मालो सर के, तो मोर मोर मोर ये तो है दिलो जिगर के, पीले पीले पीले इनके बाल है निराले, नीले नीले नीले इनकी अखड़ियों के प्याले। अजनबी पे बेधड़क खुली सड़क चलाते हैं ये जादू, लाल लाल गाल लाल लाल गाल जानते हैं लालू, देख देख देख दिल पे रहे काबू। चोर चोर चोर

जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बनी गई. फ्रॉम मूवी प्यासा, गीता दत्त सिंगिंग फॉर वहीदा रहमान. एंड आई कैन नॉट पॉसिबली इमेजिन व्हाट वेंट थ्रू गीता दत्त माइंड एज शी सिंग फॉर वहीदा रहमान, बिकॉज द रोमांस बिटवीन गुरुदत्त हर हस्बैंड, गीता दत्त हर हस्बैंड एंड वहीदा रहमान वॉज ए कॉमन नॉलेज बाय दिस टाइम. द नेक्स्ट सॉन्ग is Hemant Kumar solo from Pyasa. S.D. Barman Badwe was the composer. Sahil Ludhiani wrote the lyrics again. Jaane wo kaise log the jinke pyar ko pyar mila, humne to jab kaliya mangi kaanton ka haar mila. Sambar song pictures Gurudat, Mala Sinha Rahman and others in a musharat of gathering at Rahman's home. Gurudat is doing the singing. The last verse of the song, a beautiful poetry by the way, pay attention to the poetry part. इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, उफ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे, गम से अब घबराना कैसा, गम सौ बार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला. हियर द सॉन्ग.

जंगली न दबा छुपने वाले सामने आ चुप चुप के मेरा जी न जला सूरज से किरण बादल से पवन कब तलक छुपेगी ये तो बता।

0: निगाह मस्ताना फ्रॉम मूवी पेइंग गेस्ट। ओ निगाह मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना। आशा भोसले, किशोर कुमार ड्यूएट, एक्सेप्ट आशा भोसले नो वर्ड टू सिंग, नो वर्ड्स टू सिंग रादर। पिक्चर एंड देवानंद नूतन भैल, दे आर एंजॉइंग ए कूल नाइट ऑन द टेरेस ऑफ हर होम। शुभा खोटे, नूतन भैल्स क्लासमेट एंड हु मैरिड फॉर मनी, मैरिड गजानन जागीरदार इन द मूवी एंड नॉट फॉर लव, शी लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, इज जेलस। एंड आशा भोसले जस्ट हैज हमिंग एंड आलाप और आलाप ड्यूरिंग द सॉन्ग एंड बिटवीन वर्सेस। द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन द प्ले फॉर यू इज a very iconic song from movie Musafir. Musafir had a cast of Dilip Kumar, he's in the movie Pagla Baba, Mystery Pagla Baba, Suchita Sen, Nirupa Roy, Kishore Kumar, Usha Kiran, David Bram Chahulkar and few others. The story is about a house consisting of three families who consecutively rent it and live in it. It is a three stories or episode linked by the house, landlord David, and the house are constant in the movie. The first episode deals with marriage, Suchita Sen plays that role, female role. Second one with birth, Nirupa Roy plays that role. And third one is death, Usha Kiran plays that role. This song will bring back a lot of memories, picturing Kishore Kumar and Nirupa Roy in episode 2 and Binaka number 11 in 1957. If this does not bring back fond memories, I don't know what would. The song is Munna Bada Pyara, Ammi Ka Dulara, Koi Kahe Chand Koi Aankh Ka Tyara. I have included a little bit of Amin Sayani's introduction to the song. Here it is.
1: Sen bhi thi aur Kishore Kumar bhi. Film ka naam hai Musafir, jiska ek geet un sangeet premiyon ko khaas taur par bahut bhaya tha, jo ya to khud bacche the ya jinke bacche the.